0: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
1: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
0: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन, नंबर 9057990045, 0599-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
4: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेस्टी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेस्टी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
4: इना कोल है सालां दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: लै लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबी कोक, यूनिट 5।
3: कॉल 6476 9257, 6477 9257।
5: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए। जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग सिंस 1992। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन, 9057900560। स्टीवंस फर्नीचर।
2: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंटर द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेती रखो गिल हाउस पेंटिंग, जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजिब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिल्कुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल, 6478339960, 6478335960। गिल हाउस पेंटिंग। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करवाना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डेज रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवनज रोड, जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200, 9056781200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
6: सॉलिड बम्पर चमका मारे, मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे, मठारू वेल्डिंग, मठारू वेल्डिंग,
7: मठारू वेल्डिंग, वाओ, मूस बम्पर, डियर बम्पर, डीजल टैंक लॉक, ट्रेलर रैम, टायर रैक, ट्रेलर रिपेयर, अल्युमिनियम प्लेट बम्पर।
8: कॉल सनी मठारू,
7: 6474603055, 6474606355।
8: मठारू वेल्डिंग, यूनिट 1, 98 रदरफोर्ड।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले
3: पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेती रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री। एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 647-648-1847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन।
4: बेड डाइनिंग टेबल सोफा कर ले लेना या देना तोहफा।
5: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर
4: 7550 किम्बल स्ट्रीट मिसिसागा। कॉल 6473825500।
6: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
7: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
8: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN Toronto.
7: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
1: बहुत ही खूबसूरत गीत तुझे सुनिया एंड वेरी इंजॉयबल वेरी नाइस एवरग्रीन गीत है जी और फिल्म ताजमहल और बहुत ही खूबसूरत गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा फरमाइशी गीत से ऐसी गीत नो अक्सर प्ले कर देंगे और तुसी जदो प्ले कर दिया इंजॉय कर देंगे थैंक यू सो वेरी मच और हुन असी तुहाडे नाल मुलाकात करांगे मंडे नू मंडे सवेरे एंड वंस अगेन द इवनिंग टाइम ऑल्सो तुसी एडवरटाइज करना चाहो अपना बिजनेस अजे शो दे विच नंबर 416-716-7794 कॉल कर सकते हो तुसी एयर टाइम रेंट करना चाहते है तुसी अपना शो होस्ट करना चाहते है साडी फ्रीक्वेंसी ते ता अज दा नंबर 6477602779 ते कॉल कर सकते हो सो जी हां साडे नाल इसी तरह जुड़े रहना कल दा टेंपरेचर
2: दिस इज CJMR द वॉइस ऑफ द सिटी पार्ट ऑफ व्हाइट ओक्स कम्युनिकेशंस ग्रुप योर ट्रस्टेड लोकल रेडियो प्रोवाइडर फॉर मोर देन 70 इयर्स

0: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल, दिल का कातिल है तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: JD Music.

ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले। We are the sounds of the streets.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
1: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
0: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

किस्मत से लड़कर जीत सकता है। क्या हमारे किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है? क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है?

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320